0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Good morning, you are listening to the first update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and alongside me is Mudita. India has already been in action across several disciplines this morning with some important results coming in. Let's take a look at the latest developments and bring you up to the speed with all the action so far. Mudita, over to you.
2: Shukriya, Prerna. भारत ने आज शानदार शुरुआत की है। ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। एक अच्छी खबर नीरू ढांडा ने और दी है कि वो व्यक्तिगत फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। 27 निशानेबाजों के व्यक्तिगत क्वालिफाइंग राउंड में नीरू पहले स्थान पर रही हैं। आशिमा ने 16वां जबकि मनीषा ने 23वां स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों में शपथ भारद्वाज भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। 117 अंकों के साथ शपथ भारद्वाज 8वें स्थान पर रहे। वहीं पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में भारतीय टीम 339 अंकों के साथ छठे नंबर पर रही। अगली खबर हमारे पास तीरंदाजी से है प्रेरणा। तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का मुकाबला भूटान के लैम दोर्जी से होगा।
1: In track cycling, the Indian women's team sprint trio of Celestina, Sarita Kumari, Keerta Rangaswamy, Chikka finished 6th in qualification, clocking 50.414 seconds. They were 3.742 seconds behind leaders China. The qualification round determines the seeding for the next stage. With 6th place set to the face 4th place, India will therefore take on Chinese Taipei in Heat 1 at the 11:30 this morning. The Indian men also competed in the team sprint qualification. Rohit Singh, David Beckham and Ronaldo Singh recorded the seventh fastest time among the 8 teams in the field. They will now look to improve their performance as the competition moves into its next stage. In Kurush, Vipin's Kumar campaign in the men's 66kg category came to an end in the round of 16. He lost 0-3 to South Korea's Yoon Hyun Soo. The available scoring indicates that Vipin conceded 2 points on a chala, a basic throwing technique in Kurush, while the match feed also credits him with a throw. This results bring his individual campaign at the games to a close.
2: और वही भारतीय महिला स्क्वाश टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, वहीं अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में शिकस्त दी। जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच जीतकर ईरान के खिलाफ 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। इसमें बता दें कि तन्वी खन्ना की जो ओपोनेंट थी ईरान की नरगिस सुल्तानी, वो खेल के बीच में ही रिटायर हो गई थी। और पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: Now gliding through the slalom gates, the Kenyan slalom with the speed and focus, H. Kewet logged in an 8th place

0: finish at 118.22 seconds, closely followed by P.S. Rathod claiming 10th with a time of 127.70 seconds. P. Jagtap battled through the course to secure 7th place in 224.20 seconds, while R. Sain wrapped up the run in 9th place at 342.72 seconds, pushing through to the finish line. S. Chahan rounded out the Indian lineup in 11th place with a time of 344.87 seconds.
1: और एक खबर क्रिकेट की हम जरूर देना चाहेंगे कि सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा. नेपाल और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया है, बल्कि चारों क्वार्टर फाइनल मैचेस बारिश की वजह से रद्द हो गए हैं. ऐसे में बेहतर रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है. और कल भारत और अफगानिस्तान का मैच भी बारिश के कारण नहीं हो सका था. रिजर्व डे नहीं होने के कारण भारत ने भी बेहतर रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था.
0: And looking at the medal tally, India holds the 12th position on the medal tally with a total of 46 medals, in which Mudita 4 are gold, 21 silver and 21 are bronze.
1: तो इसके साथ ही मुदिता और प्रेरणा को दीजिए इजाजत. ठीक एक घंटे बाद हम फिर हाजिर होंगे नई और ताजा अपडेट्स के साथ. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया.

0: Good morning once again and welcome back to the second update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and I have Mudita with me. The morning has already brought some interesting developments for India with the silver medal, and we'll begin this update with the latest again from the cycling track. Women pursued cycling. The Indian women's team pursued quartet of Harshita Jhakar, Pooja Dandole, Meenakshi and Swasti Singh, finished fifth in the qualification round. The result has taken them through to the head-to-head heats, where they will now look to build on their qualification performance and continue their campaign. So, Mudita, what is there from the shooting range for our listeners?
1: Prerna, जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह ही ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है. वहीं ट्रैप शूटिंग में ही नीरू ढांडा ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और अब मेडल के लिए उनका मुकाबला जारी है. काफ़ी उम्मीदें हैं नीरू से, क्योंकि इसके पहले के राउंड में वो शीर्ष पर रही थी.
0: And now coming to sports climbing, India's Jogga Purti has officially qualified for the knockout finals in the women's speed climbing event. She clocked a time of 7.28 seconds to secure the 9th position overall, with the official cue next to her name confirming her spot in the next round. At the top of the leaderboard was China's L Deng, leads the standings with the game's record time of 6.23 seconds, followed closely by South Korea's Jae Jeong at 6.25 seconds.
1: तीरंदाजी में जहां सुबह धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने हमें अच्छी खबरें दी थीं, तो वहीं अब रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में राउंड ऑफ 16 में कुमकुम अनिल महूद और कीर्ति शर्मा क्वालिफाई करके अगले राउंड में पहुंच गई हैं, यानी राउंड ऑफ 8 में प्रवेश कर गई हैं. कुमकुम ने मंगोलिया की बिशिंदी उरान तुलंगलाक को, वहीं कीर्ति ने वियतनाम की हुआंग फुआंग थाओ को हराया. राउंड ऑफ 8 के मुकाबले जारी हैं.
0: And Mudita, if looking back at the earlier action from the Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official games debut and a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals heat 4, India's Kishore Kumar Annabarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: और अब बात टेनिस की, जहां मेन्स सिंगल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और इंडोनेशिया के गुनावन त्रिसमुवंत्रा के बीच मुकाबला जारी है. फिलहाल डी सुरेश लीड कर रहे हैं 7-5 और दूसरा सेट बराबरी पे चल रहा है. उम्मीद है कि वो भी यहां से अगले राउंड में प्रवेश करेंगे. वहीं टेनिस में ही कल जो सुमित नागल का मैच बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था, उस मैच में पहले सेट में नागल 3-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उस मैच को रोकना पड़ा था, तो ये मैच आज फिर से होगा. टेनिस में ही पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल्ड हैं. युकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी कजाकिस्तान के बेबिट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी का सामना करेगी. अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी का मुकाबला नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी से होगा. वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के क्यारन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा.
0: And there is plenty of Indian action to look forward to as the athletics program reaches its final day with 9 finals featuring Indian athletes or teams. Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar will compete in the men's pole vault final, while Pooja and Supriya Basavaraju will contest in the women's high jump final. In the men's 5000 meters final, double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable will be in action, while Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will compete in the women's hammer throw final. Medals will also be decided in the men's and women's 800 meters, as well as the men's, women's and mixed 4x400 and 4x100 meter relay finals. And looking at the medal position, India is currently holding 12th place on the overall medal tally. The Indian contingent has secured a total of 46 medals, comprising 4 gold, 21 silver and 21 bronze medals. Talking about the top 3 leaders, in first place we have China leading the standings by a huge margin with 234 total medals.

0: 135 gold, 53 silver and 46 bronze. Second place Japan and third place South Korea.
1: और वहीं आज आगे जिन मुकाबलों पे हमारी नज़र रहेगी प्रेरणा, उसमें बॉक्सिंग के मुकाबले बहुत अहम है क्योंकि वहाँ मेडल्स हम पक्के कर चुके हैं, मेडल का रंग बदलना बाकी है. वहाँ वेमेन 65 केजी में परवीन का मुकाबला होगा चाइना की ली शू से, जो अभी शुरू होने वाला होगा. और इसके बाद पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश का मुकाबला होगा फजलुद्दीन एर्किनबोयेव से और नरेंद्र का मुकाबला होगा एबेक ओराल बे से, जो कि कजाकिस्तान के हैं और ये 90 किलोग्राम के भार वर्ग में होगा. तो इसके साथ ही ये अपडेट खत्म करने का समय हो गया है. हमें दीजिए इजाजत, ठीक एक घंटे बाद हम फिर से हाजिर होंगे नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स आईची नगोया में भारत के हिस्से आई है शानदार सफलता, स्वर्णिम सफलता। नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही, जो उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से 2 शॉट आगे था। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और उन्होंने ये गोल्ड मेडल के साथ किया है। 26 साल की नीरू ढांडा भारत की लीडिंग ट्रैप शूटर

0: हैं। 2022 में ओसिजेक में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और तब से आईएसएसएफ सर्किट पर एक रेगुलर फाइनलिस्ट के तौर पर वो दिखती हैं। 2025 में उन्होंने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता और शॉटगन शूटिंग में भारत की टॉप परफॉर्मर्स में से एक बन गई। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के अलमाटी में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। तो इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड, एक नई सफलता, लगातार सफलता प्रेरणा नीरू ने हासिल करी और भारत के लिए भी अब स्वर्ण पदक की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। शूटिंग में ये दूसरा गोल्ड मेडल है।
1: And there is also a big result coming in, Mudita, from boxing. India's Parveen Hooda has stormed it into the women's 65 kilogram final after commanding a 5-0 victory over China's Li Shu in the semi-final. With this win, Parveen becomes the first Indian boxer at the ongoing Asian Games to book a place in a gold medal bout. She will now compete for the top prize in the final. This is also a significant return to the Asian Games stage for Parveen, who had won a bronze medal at the Hangzhou Games.
0: बिल्कुल प्रेरणा। और अब हम चलते हैं आर्चरी की तरफ। रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में कुमकुम अनिल मोहोद ने बांग्लादेश की साइमा सलाहुद्दीन को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला अब होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यंग से। कांग चाई यंग ने भारत की ही दूसरी निशानेबाज कीर्ति शर्मा को 7-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये दिलचस्प मुकाबला अब देखने वाला और बन गया है प्रेरणा। वहीं धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने भी आज सुबह अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहले ही जगह पक्की कर ली है।
1: The day has been unexpected for us, and we have another result coming in from tennis. India's Dakshineshwar Suresh has booked his place in the next round of the men's single after a straight set victory over Indonesia's Guawan in the second round. Suresh won the match 7-5, 7-6, with the second set going to a tiebreak, which he won 7-2. It was a strong serving performance from the Indian, who won 80% of his points behind both his first and second serves in the opening set, improving his second serve percentage to 85% in the second. There was just one break of serve in the entire match, which came in the opening set before Suresh held his nerve in the second set tiebreak to steal the win. And India's Sumit Nagpal is also currently dominating his men's single round match against South Korea's Seong Chun Hong. After taking the first set 6-4, Nagal has rode ahead in the second set with a 2-0 lead as the match continues live at the Nagoya City Higashimiya Park Tennis Center.
0: जी, और इसके साथ ही अब आने वाले मुकाबलों के बारे में प्रेरणा हमें बताइए आप।
1: And उससे पहले इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली क्लाइम टू द 11th प्लेस ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स विद another gold medal added to the collection, and India's count now stands, Mudita, at 5 gold and 21 silver and 21 bronze, bringing the total tally to 47 medals. Team India is now sitting right on the edge of the top 10, and we are just behind 10th placed Malaysia.
0: तो इस बड़ी खबर, इस स्वर्णिम खबर के साथ ही हम अब इस अपडेट को समाप्त करते हैं। अगले अपडेट में हम शायद और पदकों की खबर के साथ वापस आएंगे प्रेरणा, और अपने श्रोताओं से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: He's currently sitting in the 7th place with a score of 7 as he looks to stage a comeback and fight his way ahead at the leaderboard. And now Mudita will take you through some of the key developments from across the games.
1: जी प्रेरणा, मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने एक बड़ा उलटफेर किया है. उन्होंने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एर्किनबोव को स्प्लिट डिसीजन में 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल बाउट में जगह बना ली है. और ये सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फजलुद्दीन एर्किनबोव ने 2025 में इसी भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी. बड़ी सफलता है ये अंकुश की. और इस जीत के साथ ही अंकुश 8 साल के बाद एशियाई खेलों में उज्बेक की प्रतिद्वंदी पर जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज भी बने हैं. इसके पहले 2018 में एशियन गेम्स के पुरुष फ्लाईवेट 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल ने 2016 के ओलंपिक चैंपियन हसन बॉय दोस्मतोव को एक टाइट फाइनल में 3-2 से हराया था. तो इसके साथ ही पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भी भारत का कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है. वहीं नरेंद्र बेलवाल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है. सेमीफाइनल में वो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान के एबेक ओरलबे से 0-5 के एक मत फैसले से हार गए. होंगजो चीन 2022 में कांस्य पदक के बाद ये नरेंद्र का लगातार दूसरा एशियन गेम्स मेडल होगा. और इसके पहले परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और पक्का कर दिया था कि कम से कम वहां भी रजत पदक भारत की झोली में आएगा. इसके अलावा 3 और मुक्केबाज भी हैं जो पदक तो पक्के कर चुके हैं, लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घनगस और कपिल पोखरिया. अब देखना है कि पदक का रंग कौन सा रहता है.
0: एंड टीम इंडिया इज ऑल सेट टू continue in action in the volleyball court today. And in the men's pre-eliminatory round, Pool C, India is head-to-head now against Qatar at the Park Arena Komaki. So Qatar is at 3 and India is also at 3. So we could see, Mudita, ki some live action could come up and some interesting results will be awaited. Some medal will be awaited in volleyball.
1: जी बिल्कुल. और इसके साथ ही टेनिस में पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल ने दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को सीधे सेटों में 6-4, 6-0 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है. सुमित नागल का ये पुरुष एकल का द्वितीय दौर का मैच जो कल बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था वो आज कंटिन्यू किया गया था. इसके पहले ही आज ही दक्षिणेश्वर सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावंत सुमुवंतरा को 7-5, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया. पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल्ड हैं. यूकी भांबरी दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी खेलेगी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी मुकाबले में होगी. वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना नजर आएंगे.
0: And looking ahead, it's the final day of the athletics program and there are 9 finals lined up with an Indian athletes or team featuring in every one of them. In men's pole vault final, Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar will be in action, followed by Pooja and Supriya Basaravaraju in the women's high jump final. The men's 5000 meter final, we will see double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable take to the track. In the women's hammer throw, Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will also be competing for a podium finish. There will also be medals at stake in men's and women's 800 meters along with the men's and women's 4x400 meter relays. So Team India is all set in action and that is it from the updates for now. We will take your leave for now and we'll be back with another early update.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: दिलाया। महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस रही नीरू की, और ये एक खास बात है प्रेरणा कि ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड है भारत के लिए इस एशियन गेम्स में। 26 साल की भारतीय शूटर नीरू ढांडा, उन्होंने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही, और इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई, और उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं पुरुषों की ट्रैप शूटिंग में शपथ भारद्वाज फाइनल में पहुंचे लेकिन पदक के करीब नहीं पहुंच सके। कुवैत के खालिद अल मुदफ ने स्वर्ण पदक हासिल किया, चाइनीज ताइपे के कुनपी यांग ने रजत और चीन के की यिंग ने कांस्य पदक हासिल किया। तो इस तरह प्रेरणा शूटिंग में अब तक 15 पदक हासिल कर लिए हैं भारत ने, जिसमें 2 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: And some medals have come up officially, and now there are some unofficial medals that have also been confirmed in boxing. And stepping inside the ring, we have massive explosive updates from the Indian boxing contingent, where 3 major medal outcomes have just been locked in. Women's 65 kg semi-final, India's Parveen Hooda has stormed her way into the women's 65 kg final. With this dominant victory, she has guaranteed herself at least a silver medal, putting India within touching distance of yet another gold. Talking about the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal delivered a masterclass in the men's 80 kg semi-final to secure his spot in the gold medal match. He joins the final bound boxers, assuring Team India of at least a silver medal. Talking about men's 90+ kg semi-final, heavyweight star Narendra Berewal stood toe-to-toe in a fierce battle against world champion Ebek Urbale. Despite a courageous fight, Berewal has edged out in this semi-final encounter. Berewal officially signs off with a hard-earned bronze medal for the country. 2 final spots booked and a bronze secured. The Indian boxers are putting on an absolute show in the ring, Mudita.
0: और तीरंदाजी में भी प्रेरणा अच्छा दिन रहा भारत के लिए। धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में कुमकुम अनिल मोहित क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: Now taking our listeners to the cycling track, where India have made a route to the bronze medal race in the women's team pursuit. The Indian quadrant put together a strong performance in the heats, clocking 4 minutes 46.950 seconds. That effort has secured them a place in the bronze medal race, giving India another opportunity to fight for a podium finish in the track cycling. The team pursuit had decided over a longer distance with the riders together as a unit and maintaining their information. And let me just take you the medal tally, checking in all of the overall standings. Team India remains firmly positioned at 11th place on the medal leaderboard.
0: इसके साथ ही स्क्वैश का भी हम चलते चलते बता देते हैं कि भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने भी अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही मुदिता और प्रेरणा को दीजिए इजाजत, हम कुछ देर में फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: நேரம் 2:50 இணைந்திருக்கிறோம் குக்கு நிகழ்ச்சியில். குக்கு நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பாடல் யாருக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, ராதா கேட்டிருக்காங்க முதலை மொழியிலிருந்து. எனக்கு வெந்து தெளிந்தது அச்சம் என்பது மடமையாடா திரைப்படத்திலிருந்து பாடல் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது அவங்க கேட்ட அந்த பாடல். அமுதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இனிமை, தேனுங்கிறது இன்னொரு பக்கம் இனிமை, ரெண்டும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் அவளும் நானும்.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओह, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन

0: तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में,
0: जी
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
0: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
0: जी वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
0: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
1: ओह,
0: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
0: 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी
1: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते, लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार

0: मार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
1: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
0: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
1: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
0: बीरबल ने उत्तर दिया,
2: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। 4 ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे अरे देखो, रोशनी के ये गोले।

0: अब तो और पास आ रहे हैं। हमें हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
1: चलो जल्दी चलो।
0: हाँ
1: उन्हें बता देते हैं।
0: जय हिंद सर।
2: जय हिंद राम सिंह।
0: सर सर पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
2: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
0: जी सर।
2: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
1: जी सर।
2: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
0: जी सर।
2: जय हिंद।
0: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर।

0: नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
1: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह
3: जी सर,
2: एलएमजी संभाल, छोड़ फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
0: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
1: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
3: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
3: अच्छा, सर यही मशीन गन। हुकुम सिंह, एक काम करो
4: जी,
3: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर,
3: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो।
4: जी सर,
3: बांध दिया सर, ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ निकल, हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर,
3: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
0: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
3: सब यहाँ सर टिका लीजिए
4: सर, ऐसे
5: कालिका माता की जय।
1: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
5: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
1: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
5: साथियों, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
3: साहब,
5: तुम लोग आगे निकलो।
4: ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।

0: ललिता माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: भारत
1: आगे बढ़ो।
2: साहब साहब वो देखिए घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
3: फतेह सिंह अभी उन्हें और पास आने दो, जब पास आ जाएं तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
2: जी सर।
4: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
5: भारतीय सैनिकों के बंकर

0: समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
1: नहीं साहब।
0: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
1: नहीं साहब,
0: नहीं आदेश। इट्स एन ऑर्डर
1: सर।
0: जाओ, अलविदा। अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
2: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
3: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
3: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
2: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது தேசிய கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி.

0: 2.6 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
1: நேரம் 4:03. நேயர்களே, இப்போது கேட்கலாம் ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த கள நிலவரம்.
2: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
3: एशियन गेम्स 2026 में भारत को ट्रैप शूटिंग में आज एक के बाद एक दो सफलताएं हासिल हुई. एक इंडिविजुअल गोल्ड और एक टीम इवेंट में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक हासिल किया भारत ने. और अब नए अपडेट्स के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा.
4: एंड अब एक नजर वॉलीबॉल पे, तो एन इंटेंस इनकाउंटर इज करंटली अंडर वे एट पार्क एरिना कोमाकियास. टीम इंडिया स्टेजेस अ रिमार्केबल कमबैक अगेंस्ट कतर, फोर्सिंग अ डिसाइडिंग फिफ्थ सेट इन द मेंस वॉलीबॉल प्री एलिमिनरी राउंड पूल सी. कतर गेन द अर्ली एडवांटेज बाय विनिंग अ टाइटली कंटेस्टेड ओपनिंग सेट 28-26 इन 34 मिनट्स. इंडिया क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज इन द सेकेंड सेट, एस्टैब्लिशिंग अ 4-point lead, बट कतर क्लोज्ड आउट क्रूशियल पॉइंट्स टू टेक इट 27

0: 25 and extend their lead to 2-0. Facing a must-win situation, India responded with determination. The team secured the third set 25-23 to extend the match before carrying that momentum into the fourth set to deliver a convincing 25-20 victory and level the overall score at 2-2. After more than 2 hours of competitive play, the match enters its final place and both India and Qatar are at par now at 20-20.
1: और टेनिस में भी सफलता का दौर जारी है. अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है. दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2, 6-1 से सीधे सेटों में हराया. वहीं यूकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी का मुकाबला कजाकिस्तान के बेबेट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी के साथ जारी है. पहला सेट यूकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी जीत चुकी है और ये खबर बताते बताते ही फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है इस मैच का. 6-1 और 7-5 से यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी ने ये मैच भी जीत लिया है और वो भी अगले दौर में प्रवेश कर गए हैं. अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा. इसके पहले पुरुष एकल में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं.
0: And now let's take you through the archery action once again, with more Indian archers now making their way to the quarterfinals. Dheeraj Bumdevra and Neeraj Chauhan have both advanced to the quarterfinals of the men's recurve individual event. Dheeraj, the World Cup final champion, will face Uzbekistan's Imrik Sadviok, while Neeraj Chauhan will take on Bhutan's Lam Dorji, with the place in the semi-finals at stake for both Indian archers. In the women's recurve individual event, Kumkum Ali Mohod has also progressed to the quarterfinals. She will face Republic of Korea's Kang Chayoung in the next round, with the semi-final spot on the line. So three Indian archers are now through to the quarterfinals across the men's and women's recurve individual events, keeping India's challenge firmly alive in the medal rounds.
1: और प्रणव एथलेटिक्स के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं. आज पहला मुकाबला जो है वो मेंस पोल वॉल्ट का है, फाइनल है, जिसमें नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की प्रतिद्वंदिता जारी है. और एथलेटिक्स में आने वाले कुछ इवेंट्स और भी हैं, जहां सबकी निगाहें आज होंगी गुलवीर सिंह पे, जो आज तीसरा मेडल अपने नाम करने 5000 मीटर के फाइनल में उतरेंगे. गुलवीर इससे पहले 1500 मीटर और 10000 मीटर में रजत पदक जीत चुके हैं. और इसी इवेंट में भारतीय एथलीट अविनाश साबले भी शामिल होंगे, जो स्टीपल चेज में मेडल से चूकने के बाद अब पोडियम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा भारतीय टीमें तीन रिले फाइनल में भी हिस्सा लेंगी, जिसमें शामिल है मिक्स्ड 4x100 मीटर और पुरुषों और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस. इसके अलावा मोहम्मद अफसल पुलिकलाकत 800 मीटर रेस में हिस्सा लेंगे. और आज ट्रैक और फील्ड में मेडल जीतने के और भी मौके होंगे, जिनमें महिलाओं की हाई जंप, हैमर थ्रो और 800 मीटर रेस शामिल है. ये मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होंगे और उसके साथ ही हम फिर से लेकर के आएंगे आपके लिए नए और ताजा अपडेट्स.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: Hello and welcome back to our ongoing Asian Games coverage. I am Prerna Sharma and alongside me is Mudita, bringing you the latest updates live from the games. We start right away from the volleyball news from the court at Park Arena Komaki, where Team India has just pulled off an extraordinary comeback to secure a hard-fought 3-2 victory over Qatar after dropping the opening two sets. India came into this final group fixture in electric form, having already swept both Vietnam 3-0 and Hong Kong China 3-0 in straight sets to establish themselves at the top of Pool C. However, Qatar proved to be their toughest challenge yet. Qatar took a tight opening set 28-26 in extra points after India squandered two set points. In the second set, India established a comfortable 4-point lead midway through, but Qatar mounted a late surge to claim it 27-25 and take a 2-0 match lead. Facing a straight sets defeat, India showed tremendous grit down the stretch, holding their nerve to take their third set 25-23 and keep their hopes alive. They carried that momentum into the fourth set, dominating the rallies to win 25-20 and level the match at 2-2. It all came down to an extraordinary extended tiebreaker decider, where India held their composure through a dramatic back and forth sequence to claim the fifth set 24-22 and seal an iconic win. With this stunning reverse sweep, India finishes undefeated at the top of Pool C to advance in absolute style into the quarterfinals.
1: और टेनिस में भी आज भारत ने अपने सभी मैच जीते हैं। यूकी भांबरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी ने कजाकिस्तान के बेबेर जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी को 6-1-7-5 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2-6-1 से हराया। वहीं पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा।
0: It has been a day of breaking national records. Earlier this morning in sport climbing, Indian speed climber Joga Purthi delivered a sensational performance to a set new benchmark. Competing in the qualification round of the women's speed climbing event, Joga clocked a blistering time of 7.28 seconds, finishing 9th overall and comfortably securing her place in the quarterfinals. That impressive 7.28 second climb not only sealed her spot in the next round, but it also shattered her own previous mark to establish a brand new national record for India in women's speed climbing.
1: और नेशनल रिकॉर्ड की बात आपने की प्रेरणा, तो एक और नया नेशनल रिकॉर्ड आज बना है मेंस पोल वॉल्ट में। देव कुमार मीना ने 5.50 मीटर के साथ अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। गौरतलब है कि 5.46 मीटर का पिछला नेशनल रिकॉर्ड भी देव मीना के नाम ही था, लेकिन इसके बाद भी मेडल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। वो 7वें स्थान पर रहे हैं। वहीं कुलदीप कुमार 5.35 मीटर के साथ 10वें स्थान पर रहते हुए मुकाबले से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन एथलेटिक्स में कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं, क्योंकि विमेंस 800 मीटर के फाइनल में पूजा 7वें स्थान पर रही, लेकिन महिलाओं के ऊंची कूद के फाइनल में पूजा सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी है और 1.80 मीटर के साथ वो टॉप परफॉर्मर्स में बनी हुई हैं। ऊंची कूद में सुप्रिया बासव राजू भी फाइनल में हिस्सा ले रही हैं। और इसके अलावा विमेंस हैमर थ्रो का मुकाबला भी जारी है, जिसके बारे में हम अपडेट लेकर के आएंगे आपके पास अगले अपडेट के साथ में। तब तक उसका रिजल्ट हमारे पास भी आ जाएगा। और अब इसके बाद जो मुकाबले होंगे उसमें मेंस 800 मीटर का फाइनल है, फिर मेंस 5000 मीटर का फाइनल, और इसके बाद रिले रेस है विमेंस और मेंस।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स में और

0: बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। भारत ने पदकों का अर्धशतक पूरा कर लिया है इस एशियन गेम्स में। पिछले एक घंटे में भारत ने एथलेटिक्स के बदौलत 3 कांस्य पदक हासिल किए और आज पूरे दिन में 5 मेडल्स हो गए हैं भारत के, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में, उसके अलावा 4x100 मीटर मिक्स रिले और महिलाओं की ऊंची कूद में इन 3 प्रतियोगिताओं में भारत ने कांस्य पदक हासिल किए हैं। हम एक के बाद एक इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुलवीर सिंह की शानदार सफलता के साथ। पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में। उत्तर प्रदेश के अतरौली में पैदा हुए गुलवीर ने इसके पहले 1500 मीटर और 10000 मीटर में सिल्वर मेडल जीते हैं और इसके साथ ही वो भारत के दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं जिसने 2 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं एक एशियन गेम्स में। इसके पहले पीटी उषा ने 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 5 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल था। और दूसरी सफलता जो आई है वो आई है 4x100 मीटर मिक्स रिले से, जिसमें गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, राजराजन अभिनया और हरिता भद्रा की चौकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया है। पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था इस इवेंट में और पहली बार में ही पोडियम फिनिश किया है। शानदार सफलता है ये भी। इसके अलावा महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा शुरुआत से ही मेडल की दौड़ में बनी हुई थी, हालांकि उनसे उम्मीद जो गोल्ड की थी उससे वो थोड़ा सा नीचे आई और कांस्य पदक लेकिन उन्होंने हासिल किया। इसी इवेंट में सुप्रिया बासव राजू मेडल की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई। एथलेटिक्स के बाकी इवेंट्स में महिलाओं के हैमर थ्रो में अनुष्का यादव और तान्या चौधरी कोई मेडल नहीं हासिल कर सकी। वहीं पुरुषों के 800 मीटर के फाइनल में अफसल मोहम्मद पुलिकलालत 8वें स्थान पर रहे।
1: And recalling another crowning highlight of the first half of the day, history was written at the Aichi Peripheral General Shooting Gallery as Neeru Dhanda became India's first ever women's trap champion at the Asian Games. The 26-year-old put on a master class in precision, starting her morning by leading qualification with a top score of 118 out of 125. That effort, alongside teammates Manisha Kheer and Ashima Ehlawat, powered India to a glorious silver medal in the women's trap team event. But Neeru wasn't done yet. Stepping into the individual final, she delivered an absolute masterclass under pressure, hitting 28 out of 30 targets. That performance not only clinched the gold medal, India's second shooting gold of the games, but it also shattered the Asian record of 24. With that iconic victory, Neeru became the first Indian woman to win an Asian Games gold in any shotgun event.
0: और हम एथलेटिक्स की बात आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि अब शुरू होने वाला है महिलाओं का 4x400 मीटर रिले फाइनल, जिसका रिजल्ट आते ही हम आपको उसके बारे में भी खबर देंगे। इसके बाद होगा पुरुषों का 4x400 मीटर रिले फाइनल, जिसमें धर्मवीर चौधरी, मनु थिक्कनल्लिल, राजेश रमेश और जय कुमार हिस्सा ले रहे हैं।
1: And with those latest additions coming in, Team India's total medal tally has officially bumped up to 50 medals. So it's a half century for India, Mudita, of the medals. The country's breakdown now stands at 5 gold, 21 silver and 24 bronze. Every single edition continues to solidify India's position on the Asian Games leaderboard. With this, we come to the end of this early update, but we will be back soon at 6:30 p.m.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कंटिंजेंट के लिए आज शानदार दिन रहा है। खास करके एथलेटिक्स में आज पदकों की झड़ी लग गई है। एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत ने एथलेटिक्स में। इसके अलावा आज पूरे दिन भर में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं भारत ने। एक एक करके हम उन सभी पदकों के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और स्वागत है आपका एशियन गेम्स के ताज़ा अपडेट्स में। तो सबसे पहले प्रेरणा, मैं हूं मुदिता और साथ में है मेरे प्रेरणा। तो प्रेरणा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडल की, जो आया है महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में। किरण एम्पुवम्मा प्राची और विद्या रामराज की चौकड़ी ने 3 मिनट 29.69

0: किन का समय लेकर टॉप किया और आज के दिन को अपने स्वर्णिम दिन में बदला है। और इस जीत के साथ भारत ने इस इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाड गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा है। इसके अलावा जो पदक आया है वो है पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में, जहां कांस्य पदक जीता है धर्मवीर चौधरी, मनु किनलिल, विशाल टीके और जय कुमार की चौकड़ी ने। इनका समय रहा 3:01.61। इसके पहले 4x100 मीटर के मिक्स रिले में भी कांस्य पदक जीता भारतीय दल ने। गुरिंदर वीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41.06 सेकंड के समय के साथ, यानी 41:06 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इसके पहले हम बता चुके हैं हालांकि अपने श्रोताओं को, लेकिन एक बार फिर से जिनसे भी मिस हुआ हो हम बताना चाहेंगे कि एथलेटिक्स में 5000 मीटर के फाइनल में गुलबीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और वहीं महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने भी कांस्य पदक जीता।
1: And Mudita, while today brought plenty of reasons to celebrate with brand new medals added to the tally, track and field gave us realistic look at just how the competition really is at the Asian Games. It was a session filled with strong efforts, personal achievements and even national records, even if the results did not end with a medal around the neck. Starting with the track events, Pooja lined up in the women's 800 meter final against some of the fastest runners on the continent. She stayed in the mix through the first lap and pushed hard all the way to the finish line, ultimately placing 7th overall with a time of 2:06.72. China's Wu Hongzhou took the gold medal in that race. Over in the men's 800 meter final, Mohammad Afzal was looking to repeat his success from the last Asian Games in Hangzhou, where he won a silver medal. He put up a brave fight against a very fast pack, but as they rounded the final bend, he couldn't keep pace with the leaders. Afzal crossed the line in the 8th place with a time of 1:48.27. Moving over to the field events, India had two athletes competing in the women's hammer throw final. Tanya Chaudhary came remarkably close to stepping onto the podium. She threw a distance of 65.35 meter, which was actually the best performance of her entire career. That personal best earned her 4th place, leaving her just one spot short of the medal. Her teammate Anushka Yadav also put together a solid series of throws, finishing right behind her in the 5th place with a mark of 64.56 meter. Finally, the men's pole vault final turned out to be a mix of heartbreak and history. Kuldeep Kumar cleared the bar at 5.35 meter, but 3 missed attempts of 5.50 meter saw him finish in the 10th place. Meanwhile, 22-year-old Dev Meena had an incredible day on the runaway. He cleared 5.50 meter on his second attempt, breaking his own previous national record, Mudita, of 5.46 meter that he set earlier this year. However, because of the overall level of the competition, the bar was set so high that even a brand new national record was only enough to secure 7th place in the final standings.
0: जी बिल्कुल, और अब जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं शानदार प्रदर्शन की, तो हम एक बार फिर से अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि आज भारत ने इसके पहले 3 मेडल और जीते थे। ट्रैप शूटिंग में महिलाओं ने 1 गोल्ड, यानी नीरू ढांडा ने एकल प्रेस स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं महिलाओं की ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय दल ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। इसके अलावा बॉक्सिंग के 90 किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है।
1: And with these major updates coming, Team India has now officially broken into the 10th position on the leaderboard, reaching a grand total of 52 medals.
0: तो इसके साथ ही अब हमको दीजिए इजाजत। दिन के आखिरी अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे फिर से ठीक 7:30 पर। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேரம் 6:36 நேர்கள் நினைந்திருக்கிறீர்கள் நிலை பண்பலை 102.6 மெகா ஹெர்ட்ஸின் ஒளிபரப்பில். இனி வசிக்கலாம் சேவை செய்திகள். 2027 ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் கைவினைஞர் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் டிஜிடியில் நடத்தப்படும் அகில இந்திய தொழிற்தேர்வில் தனித்தேர்வர்களாக கலந்து கொள்ள தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and welcome back to the Ali Updates on Asian Games 2026. I am Prerna Sharma and I have with me Mudita here, and we have bring you back with the updates from the latest Asian Games. So starting with today's result on the archery range, Dhiraj and Neeraj Chauhan both delivered solid performances in the men's recurve individual event to advance to the quarterfinals, while Kumkum Anil Mohod also progressed to the quarterfinal stage in the women's recurve individual category. Over in today's boxing semi-finals, Parveen Hooda scored a convincing 5-0 victory in the women's 65kg division to reach the final, and Ankush Panghal fought through his men's 80kg bout to secure place in the gold medal match, while heavyweight Narendra Barwa fell in men's 90+ kg semi-final to wrap up his campaign with a bronze medal. Over to you, Mudita.
2: जी प्रेरणा, और आज एथलेटिक्स में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। 1 गोल्ड 9 सिल्वर और 14 कांस्य पदकों के साथ भारत ने कुल 24 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज एथलेटिक्स में भारत ने 5 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है। सबसे पहली सफलता आज हासिल की कुलवीर सिंह ने, जिन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया, और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में। इसके बाद 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में भारतीय एथलीट्स ने कांस्य पदक हासिल किया। गुरिंदर वीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41:06 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही, और इसके

0: साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता और इसके बाद महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में आया स्वर्ण पदक। किरण, एम पुवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और इस जीत के साथ ही भारत ने इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाई गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा और भारत ने अपना अभियान खत्म किया एक और मेडल के साथ जो आया पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में। धर्मवीर चौधरी, मनु थिक्कनलिल, विशाल टीके, जय कुमार की चौकड़ी ने 3:01.61 का समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया।
1: And definitely it has been a very remarkable day for India with 2 goals coming in alongside other prominent medals. And Mudita, looking ahead to tomorrow's archery action, India's compound archers take center stage in the 3 major semi-finals with the women's team facing the Republic of Korea, followed by the mixed team taking on Thailand and concluding as the men's team goes hand to hand with Republic of Korea. Meanwhile, tomorrow's boxing schedule features 3 high-stakes semi-final bouts where Lovlina Borgain takes on Kazakhstan's Natalia in women's 75 kg and Kapil Pokharia meets Uzbekistan's Turab Bek in the men's 90 kg semi-final.
0: कल की बात करने से पहले प्रेरणा हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि टेनिस के मिश्रित युगल के पहले दौर में जो है मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला जो चल रहा है उसमें एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से हो रहा है। पहला सेट भारतीय जोड़ी 6-4 से हार चुकी है। दूसरे सेट में उम्मीदें अभी हमारी बरकरार हैं, वो शुरू होगा और उसके बाद हम देखते हैं। हालांकि टेनिस में आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इसके पहले के दोनों एकल और दोनों डबल्स मुकाबले भारत ने जीते।
1: Coming to wrestling, Nisha faces North Korea's Park Soy-gum in the women's 68 kg, which is going to be held tomorrow. And later, Sunil Kumar competes in the men's Greco-Roman 87 kg wrestling.
0: और कल मुकाबला शूटिंग में भी देखने वाला होगा क्योंकि 25 मीटर रैपिड फायर में पुरुषों में अनीश भानवाला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में आज की स्वर्ण पदक विजेता नीरू ढांडा उतरेंगी काइनन चेन्नई के साथ। तो इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे सुनना मत भूलिएगा डेली हाइलाइट्स, जिसमें हम आज के एशियन गेम्स के पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों की हर सफलता असफलता की कहानी आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही मुझे यानी मुदिता और मेरी साथी प्रेरणा शर्मा को दीजिए इजाज़त। कल सुबह ठीक 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேரம் 7:15 நேர்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் நிலை பண்பலை 102.6 ஆஸ் ஏஞ்சல் நிகழ்ச்சி தான். ஆஸ் ஏஞ்சல் நிகழ்ச்சியில் கடிதம் மூலமாக உங்களுடைய விருப்பப்படல நீங்களும் கேட்டு ரசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் கார்டு வாங்கி அதில் உங்களுடைய பெயர், ஊர், உங்களுக்கு பிடித்த பாடல், அந்த பாடல் இடம்பெற்ற திரைப்படம் இது எல்லாத்தையும் எழுதி நிலைய இயக்குனர் ஆஸ் ஏஞ்சல் அகில இந்திய வானொலி நிலையம் திருநெல்வேலி 6270002 அப்படிங்கிற முகவரிக்கு அனுப்பினீங்கன்னா செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமை தோறும் 7:30 ஒளிபரப்பாகும் ஆஸ் ஏஞ்சல் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய விருப்பப்படல நீங்களும் கேட்டு ரசிக்கலாம். ஆசைஞ்சல் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல் உங்கள் காற்றலைகளை காத்துட்ருக்கேன். நான் தான் உங்கள் கடையம் ஞானம். இப்போ நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக வெள்ளிவாக்கம் குபேந்திரன், மகேஸ்வரி, திருமலிசை, மணிவண்ணன், ராணி, வாகு, ராமசாமி, சாத்தான்குளம், எம்எஸ் மயில், சங்கராபுரம், பொன் சீனிவாசமூர்த்தி, தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி, செந்தில்குமரன் இவங்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இவங்களுக்காக இந்த பாடலை நாம கேட்டு வந்துடலாம்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
2: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहीं। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
3: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today, she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
1: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही 1 पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई, पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसू की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी, भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया, और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा, पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
4: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbey. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbey. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी 3 धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा, खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
5: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
4: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज्ड द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tie break to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With three wins from three matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव

0: तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
1: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ आठवां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौर ने 127.70 सेकंड के साथ दसवां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला केनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने सातवां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने नौवां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
0: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
2: लुकिंग बैक एट द अर्लियर एक्शन फ्रॉम पैसिफिक लॉन्ग बीच इन तहारा, सर्फिंग मेड इट्स ऑफिशियल एशियन गेम्स डेब्यू, अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर द स्पोर्ट। इन द मेंस शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल्स हीट 4, इंडियाज किशोर कुमार अनबरासु वेंट हेड टू हेड अगेंस्ट टॉबी एस्पेजॉन ऑफ द फिलीपींस। किशोर पुट अप अ स्पिरिटेड एफर्ट ऑन द वेव्स, फिनिशिंग विद द स्कोर ऑफ 5.37 टू एस्पेजॉन्स 8.53, विच अनफॉर्चुनेटली एंडेड इंडियाज हिस्टोरिक रन जस्ट शाय आउट ऑफ द मेडल राउंड्स। इवन दो द कैंपेन came to a close, Kishore's quarter-final appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
0: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
1: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
0: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
1: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ नौवां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
2: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
0: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: सबसे पहले एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: Benchmark domestic indices decline. Sensex falls nearly 250 points. Nifty settles at 22,716. India is working to become world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. And global crude oil prices decline over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,716 के स्तर पर दर्ज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामोहन नायडू ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज हुई मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ एनएसए मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट रही वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से कारोबार की शुरुआत में से ही आज दबाव रहा दोपहर बाद बाजार में कुछ सुधार के बावजूद सूचकांक लगभग 6 महीनों के निचले स्तर पर दर्ज हुए
0: Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. The Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index shed 1%, while the small cap 100 index dropped 0.8%. Markets opened lower this morning, tracking weak global cues. In the first hour of trade, benchmark indices touched the day's low before staging a reversal. Despite a moderation in losses during the afternoon session, the benchmark indices closed near their six-month lows as persistent global and domestic headwinds along with pressure related to the monthly Nifty futures and options FNO expiry, continued to weigh on market sentiment.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 18 कंपनियों में आज गिरावट रही गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.7% एचसीएल टेक 2.3% और टीसीएल 1.7% के नुकसान से बंद हुए हालांकि अडानी पोर्ट 4.4% सन फार्मा 1.1% के साथ साथ टाटा स्टील और कोटक बैंक 1% की बढ़त बनाने में कामयाब भी रहे
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged lower. Among the top laggards, consumer durables skidded 2%, focused IT lost 1.8%, and insurance dropped 1.6%. In contrast, services gained 1.5%, telecommunications rose 1.3%, and metal added 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,462 companies declined

0: 1,925 advanced and 209 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार दर्ज हुआ. डॉक्टर शर्मा, किस तरह से देखते हैं बाजार की दिशा को? बाजार में कहाँ कुछ घबराहट सी थी जो बाजार वैश्विक परिदृश्य में कहीं तो बिकवाली के दबाव में रहा, आज लगभग एक बार उसने आज दिन के अपने निचले स्तर को भी छुआ. हालांकि बाद में थोड़ा सा सुधार तो हुआ, लेकिन ओवरऑल आज टोटल माने तो बाजार में गिरावट ही हावी रही.
2: जी बिल्कुल, बाजार काफ़ी वीक था आज, और कारण यही है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. तो उसका जो उम्मीदें थी कि शायद कुछ ट्रंप में और ईरान में बात होगी, शायद ट्रंप साहब कोई डिसीजन लेंगे, पीस वार्ता शुरू होगी या फिर हॉर्मुज को खोलने की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है. और दूसरे नंबर पे जो एक यूएस ट्रेजरी बिल जो है, जो उसका जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए या फिर कैपिटल फ्लोज़ के लिए अच्छे नहीं हैं. और तीसरे नंबर पे जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो भी इम्पैक्ट कर रहा है. तो क्रूड ऑयल तो बहुत ही अभी
1: ऊपर की
2: चिंता का कारण तो है ही है. और पहले क्या होता था कि वॉलीटिलिटी आती थी, एक बार प्राइसेस ऊपर जाके फिर वापस करेक्शन लेके कुछ ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती थी कि करेक्शन हो गई है, कि अभी कुछ शांति वार्ता की बात होने लगी है, तो प्राइसेस एकदम से करेक्ट होते थे. लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है. अभी प्राइसेस ऊपर जाके 105, 106, 107 के आसपास सेटल हो रहे हैं, वहीं पे ऊपर नीचे थोड़ी वॉलेटाइल है. बट जैसे पहले एक बड़ी करेक्शन आ जाती थी जब प्राइसेस ऊपर जाए, वो नहीं हो रहा है. तो अगर ये ऐसे ही स्टेबल रहते हैं इस लेवल पे जाके, तो काफ़ी मतलब एक वरिंग फैक्टर है, ख़ास करके हमारे लिए भी, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड के. और जो जैसे आपने बात की कि मार्केट्स में पहले काफ़ी नेगेटिव था, डिसेलरेशन थी, उसके बाद मार्केट्स रिकवर भी हुई, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी डे था डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में एक्सपायरी डे था, तो जो शॉर्ट कवरिंग्स थी काफ़ी जो ट्रेडर हैं उन्होंने अपनी रिकवरी पोजिशन, जब मार्केट एक लेवल पे जाके और डिसेलरेट नहीं हो रही है, एक लेवल पे आ गई है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बना है. अभी मार्केट काफ़ी लो पे है, जो जैसे आपने बताया कि 2-3 साल के लो स्तर पे मार्केट है,
1: तो एक
2: अभी तो 6 महीनों के स्तर पे है. और जैसे पहले 23,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन अभी 23,000 से भी नीचे है मार्केट. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि ऐसा एक बाइंग एडवांटेज भी आता है इन्वेस्टर के पास, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है. ये जो भी ग्लोबल हेडविंड्स हैं उसी की वजह से, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसी की वजह से, अदरवाइज इंडिया के.
0: हाउ डू यू व्यू द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच वंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैस which was introduced in August. Typically, markets are heightened volatility on monthly expiry days. However, CAS has led to such wild swings, which you noticed today as well in the benchmark indices, and that too at the fag end of the sessions. How do you react to the CAS bringing about such volatility in the market?
2: Yes, I agree that at the closing time some volatility exists in the
0: within 2 seconds it happens.
2: Yes, in the cash market and in the options also. But otherwise, I believe there is some stability during the day session. When you are in the mid of the day, then the stability is also there. But at the closing time, some volatility happens in the last 10-15 minutes. So I think that is majorly retailers are not investing in the options, so that's why I think they are not impacted. But in the trading segment, this is a worrying factor. And SEBI is also taking measures to resolve it, and I believe there will be some plausible solutions in the coming times.
0: A consultation paper is available till 3rd October.
2: Yes,
0: okay.
2: Yes.
0: Also, the Indian benchmarks have now logged one of the longest weekly losing streaks in years. How much of this fall is domestic because of earnings, valuations?

0: FPI flows versus external, which you mentioned also, oil, US yields, global risk off, etc.?
1: Yes, I believe this is majorly because of the international factors, because our fundamentals are strong, very, very strong, because now we are very good in the IIP numbers. Our GDP numbers are 7.8%. Though inflation worries are there, that too because of the international factors, as WPI is significantly increased to the level of more than 9%, and that is also passing through to the CPI. But overall, the other growth indicators, whether the exports are growing 17-18% in merchandise segment, and IIP numbers, core infrastructure, all are steady and growing significantly. But at the global level, such kind of the news like crude prices are going up and there is no sign of discussion between Iran and US, and again the treasury 10-year treasury bill yield are high and dollar is again strengthening and the US has increased the Fed rate, so all these are the negative factors for the financial markets. That's why the global volatility impact the markets in emerging Asia, like India is impacted by such volatility. So, but domestically, I think there is no bad news from any segment.
2: अभी थोड़ी दिन बाद ही बाजार में दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे.
1: जी.
2: और आम तौर पे बाजार तिमाही नतीजों को पहले से ही भांप लेता है, महसूस कर लेता है.
0: फैक्टर इन कर लेता है.
2: जी. क्या बाजार अभी भी उन ट्रिगर्स से कहीं उत्साहित होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि उनके नतीजों को बाजार उससे उत्साहित नहीं है?
1: देखिए, नतीजों में क्या होता है कि उससे पहले मार्केट्स इतनी डाउन साइड या इतनी डिसेलरेशन नहीं लेती हैं, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ये जो मेजर इम्पैक्ट आता है, जो डिसेलरेशन है, जो अभी हम कुछ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉल आया, जो मार्केट्स पहले कंसोलिडेट कर रही थी समवेयर बिटवीन 23,000-23,500, बट नाउ मार्केट्स डिसेलरेट बिलो 23,000, बट बिकॉज ऑफ दी
2: 23,000 के स्तर से नीचे अगर आता है तो क्या ये चिंता का सबब है या ये अवसर का समय है?
1: देखिए, मैं तो इसको अवसर का
0: आज 22
1: अवर मैं तो इसको अवसर का
2: अवसर मानूंगा.
1: अवसर मानूंगा, क्योंकि अब आप 23,000 के नीचे हैं तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, आई बिलीव दैट इज वेरी लुक्रेटिव नाउ. आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट इज वेरी गुड, आई वुड से, बिकॉज एक ना एक दिन तो यूएस और ईरान में पीस होगा, सीज फायर होगा दोनों,
2: बट उसके पहले कितना नुकसान,
1: उसके पहले कितना नुकसान होगा वो मार्केट्स ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुके हैं.
2: अगले सप्ताह मौद्रिक नीति भी आनी है रिजर्व बैंक की, तो वो कैसे प्रभावित होगी?
0: डॉक्टर शर्मा, एज माय कॉलीग सेड, आरबीआई एमपीसी पॉलिसी इज नेक्स्ट वीक, सो आर वी सीइंग डीरेटिंग ऑफ इंडियन इक्विटीज after years of premium valuations, which you also just pointed out, or is this mainly a liquidity and risk premium story?
1: I think this is the story of the uncertainty, actually, at the global level. That is impacting the market sentiment. Otherwise, markets hold a strong potential to bounce back. If good talks or the peace talk starts between US and Iran tomorrow, then the markets will strongly bounce to the
0: sentiments
1: will improve. So I believe this is the story of sentiments and the volatility at the global level. But market pillars, like markets are growing, or the economic sentiment or the business sentiment is based on the four major things, like the demand trajectory, second the stability in the repo rate during the last many quarters, and the efforts of the trade and industry, and last the hand holding provided by the government. Many reforms undertaken by the government during the last many years, and particularly during the West Asia crisis, during the months of March, April, May. So these are supporting the sentiment of the investors. But at the global level, the uncertainty again impacts the sentiments during the some such kind of volatility.
0: Moving on, 17 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, ISP, recorded year-on-year expansion in July 2026, with the 10 posting double.

0: RBI's rate path in the next 6 to 12 months?
1: I think because now the sentiment is on the basis of the stable repo rate and some rational oil prices were there earlier before 6 months, but now these are very volatile. So these are impacting the sentiments and the price cost margins of the producers. So if the oil goes up, then again there will be some more impact on the price cost margin, the profitability of the producers, and that can impact the sentiment of the businesses.
2: चलिए कच्चे तेल के बढ़ नजर डालते हैं सराफा बाजार पे. घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.2% के नुकसान से 147,667 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी 0.6% की गिरावट से 221,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वैश्विक परिस्थिति में सोने और चांदी की कीमत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है?
1: देखिए, मेरे को तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा अपना व्यू है, मेरे को लगता है कि अभी दिस इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डॉलर अभी स्ट्रेंथन हुआ है थोड़ी देर के लिए और ये गोल्ड में जो फॉल आया तो इसमें
2: कहीं ना कहीं अवसर बनते हैं. जी डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स डिक्लाइंड, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,716. इंडिया इज वर्किंग टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, सेज सिविल एविएशन मिनिस्टर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन ओवर 1%. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथरा. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியில் 100.1 FM கோல்டு அலைவரிசை. நேரம் 11:30 மணி 37:34.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा. नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर

0: इस संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। भूमि संसाधन विभाग ने कल नई दिल्ली में नदियों के पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में नदी क्षेत्रों के विकास और जल संरक्षण के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के जरिए प्रस्तावित पायलट परियोजनाओं पर चर्चा हुई। भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए उन क्षेत्रों का भी विकास जरूरी है जहाँ से नदियों में पानी पहुँचता है। निर्वाचन आयोग ने कल दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष शिविर लगाए। इन शिविरों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है। आयोग के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों ने शिविरों में पहुंचकर SIR और फॉर्म लेने या जमा करने से जुड़ी जानकारी ली। आयोग ने बताया कि अगले दौर के विशेष शिविर 7 और 8 अक्टूबर को लगाए जाएंगे। आयोग ने युवाओं से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने असम अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों की संयुक्त मैदानी यात्राओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी समिति अध्यक्षों से असम के अपने समकक्षों के साथ मिलकर मैदानी दौरे जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि बातचीत और आपसी समझ के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों का जल्द और आपसी सहमति से समाधान किया जाना चाहिए। भारत की स्पिन गेंदबाजी श्री चरनी ने ICC महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चरनी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी है। एशियाई खेलों के फाइनल में 3 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा. नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है.
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है. ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है. भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है. विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों

0: मुख्य सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल एक नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह लद्दाख के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले लद्दाख में अब भी फूलों की खेती सफल हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहल पर फूलों की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और उड़ीसा में भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, "The country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep." The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Secretary George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, DDPA, at the ongoing UNGA. Last week, Secretary George highlighted the need for stronger international cooperation to return cultural properties during a high-level side event at the UNGA. The Ministry of Social Justice and Empowerment will organize a Safai Mitra Suraksha Evam

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा. नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है.
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है. ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.
2: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है. भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है. विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया. इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा. सम्मान सफाई

छात्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का मकसद सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में मदद करना है। देश भर से शहरी, स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने जायरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने से संबंधित नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR जारी किया है। जायरोप्लेन के पायलट लाइसेंस के लिए ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग सिलेबस नामक इस CAR में DGCA से जायरोप्लेन श्रेणी का पायलट लाइसेंस हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जमीनी और उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यांग्दी में 200 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरला, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதமான கானங்களால் இதுவரை தாளட்டி சென்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 MHz. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் துள்ளாத மனமும் துள்ளும் மற்றும் சேது ஆகிய திரைப்படத்திற்காக ஒரு சில பாடல்கள் வந்து சென்றன. பண்பலையில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। भारत और उभरती आर्थिक व्यवस्था मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत ने औसतन 7.9% की वार्षिक वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की है। श्री दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस

0: वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन चल रहा है। 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibir George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Secretary George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, DDPA, at the ongoing UNGA. India's High Commissioner to Malawi, Amiraram Gujar, yesterday received a delegation from the United Nations Development Programme, UNDP, and the UN Capital Development Fund, UNCDF, to discuss the eKYC and Digital Identity Project in Malawi, supported through the India-UN Development Partnership Fund. UNDP Malawi resident Representative Fenella Frost and UNCDF Regional Head in Nairobi, Rufaro Sikyasu, led the delegation. Earlier this month, another project supported by the same fund was inaugurated in Sierra Leone, a rehabilitated skills training center in Kenema. The High Commission of India there joined the government of Sierra Leone, UNDP, and the UN country team for the inauguration on September 18th. Election Commission EC has organized special camps at different colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. The camps will continue till today. EC said that a large number of students visited the camps with queries related to SIR and obtaining or submission of forms. It added that the block-level officers, BLOs, present at these camps guided the students to fill their forms, collected the filled-in forms and also resolved queries related to the SIR. Another round of camps will be organized on 7th and 8th of next month. Special camps will also be held at all polling station locations on 4th and 11th of next month for enrollment of all categories of electors. The Commission said that the new applicants attaining the age of 18 years on or before 1st of October this year should apply in Form 6 for inclusion of their names in the electoral roll. The Ministry of Labour and Employment has organized a Shram

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனியராகம். இன்றைய இனியராகம் நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் ராம்நாராயண் அவர்களின் சாரங்கி இசை, பத்தோ சரோதி அவர்களின் சரோதிசை, உஸ்தாது அமீர்கான் அவர்களின் பாட்டு ஆகியன இடம்பெற கேட்டீர்கள். பண்பலில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரிணி. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आज सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजना के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीति का आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। भारत के स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। श्री चरणी ने महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी हैं। एशियाई खेलों के फाइनल में T20 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। उन्होंने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रन बनाए थे। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।